सखियों चलो वृंदावन की ओर चलते हैं, वहाँ पे माखन मिश्री मलाई रबड़ी सब कुछ मिलता है।

0: तू नहीं तो कुछ भी नहीं, रब ने तुझको बना के मुझ पे एहसान किया।
1: हाय रूम में चंको पॉप्स ए पे लवली नंबर्स है। आई जस्ट लव व्हेन यू प्ले नंबर्स इन योर शो, ब्यूटीफुल नंबर्स, आई एम एंजॉयिंग द नंबर्स, टॉप्स योर शो इज, दोस पाजा सॉन्ग्स ऑल टॉप सॉन्ग्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राजन फ्रॉम वेरलम।
2: Good afternoon, Romeo. Sundowner rocking big times. Only the best. Good vibes and awesome music. Shout out to Rubeshini, Prashanta, Shivani, Rubeshin, Shivan, Nikhailan and Krishailan. Wishing them a lovely weekend. Lots of love from Molly.
3: Don't worry, bro. That noise just means the engine is purring like a lion.
4: That's not a purr, man. Your clutch is slipping. Pull into Goldwagen right now.
3: Goldwagen? For Nissan?
4: Yes. They supply precision-engineered Schaeffler clutches, wheel bearings and timing kits for Ford, Hyundai, Nissan and more.
3: Wow.
4: What about Toyotas and Suzukis? Goldwagen has quality vehicle parts for every brand.
3: Okay, I'm going.
4: Goldwagen. Keep on driving.
5: Listen. Another hit song makes me want to dance. Lotus FM.

0: Okay, thank you so much. Let's try this voice note.
1: सजना वे सजना मेरे यार, सात मंदिर भूल गया,
0: Oh, very creative there.
1: तुम का ना ना ना ना ना, दिल है दीवाना, दिल है दीवाना, तुम ता ना ना ना ताना, दिल है दीवाना। म्यूजिक बॉस,
0: Yes, I love it. Thank
1: वाओ,
0: you.
1: ब्यूटीफुल रोमियो, वी आर हैविंग फन। यस, वी आर रियली हैविंग फन इन योर कंपनी।
0: Yes, I love it.
1: दिल दीवाना,
0: Aibo.
1: ना ना ना ना ना।